0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: हाँ जी ग्रान ओरिजिन को तसोरे रेडियो अमने फेम शिक्षा रही है चार बटा ग्राम प्रोग्राम दिया प्रोग्राम तासु दिए भी नतर दो बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम अट्ठासी शारीय चार बटा ग्राम बंदी और सिफर 309-711-88 मैसेज डाली गले चाहिए सिफर 309-711-88 मेसेज कर दे मुग्ता चा अनस भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डेरा मेरा बानी डेरा शुक्रिया स्तासु दिन अलावा जुनेद खान मुग्ता मेसेज कर दे वही अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब यह शोरूश प्रोग्राम डेरा डेर मजेदार दे डेरा मेरा बानी डेरा शुक्रिया स्तासु च प्रोग्राम औरे खवाई वाकई मौसम की तब्दीली रागत दे दी बलचा मुग्ता मेसेज कर दे मुफ्ती साहब सलामुना कबूलक قبول کا تاج الحق فرام میران خستہ بیان تاج الحق سے وہ میران نے دو ٹیلیفون کر دے وی سلامونا قبول کا ڈیرہ میرا بانی تاج الحق سے چتا سوزم کا پروگرام اور ہے پروگرام کو خوائی اور پروگرام کی تاسو میں ٹیلیفون ہم کر دے ڈیرہ میرا بانی ڈیرہ شکریہ استاد سوچ
1: میں مولا یا صل لی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
0: हाँ जी ग्रान ओरिजिन को जी ओकाल तरफ तो गुरु जी प्लान मिक्सर सुखती अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी दूसरे जम कर आता हूँ नशला 0309-711-88 टेलीफोन कॉलेज है 85-83 मैसेज डाले के लिए रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क फोटोग्राम फेसबुक पेज दे रिकमेंड पिलारी हूँ सवाल न कौले जी ओबल काल तरफ तक रुचि प्लान मिक्सर सुखती अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी जी अस्सलाम वालेकुम सर सवाद राजी जी जी इसका सवाद राजी अखबला खबर हो कही जी हेलो जी इसका सवाद राजी जी अपना खबर हो कहे जी 0309-711-88 मैसेज डाली गले छे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटाग्राम दा जंग दा फेसबुक पेज दे रिकमेंड फला जो हमता उस सवाल आता तो पूछ मुन्ना कौले छे कोशिश कोई छे टेलीफोन मुन्ता जंग दे मोबाइल नंबर 0309-711-88 जका अक्सर जमगा चिकम दे लाइन वाला नंबर दे दे कि डेरी मसली नदी वजह ता कोशिश कोई चिम त पति नंबर मन रात तक कोई जमगा उस ता रात तक दे सामने सर की जो कल तरफ तक गुरु सर सुती अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी हेलो
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी दूसरा जमकर आपता हूँ 0309-711-88 सर रात तक होने

0: अकबर टी यानी अकबर चाय।
1: हर तरफ ता दाना रीदी चिक्रिमान क्रिमान औ क्रिमान होए तासो हम हैरान ये जो उस कम क्रिम जान लरा उड़ू जग छ मार्केट के हो तो खुदे मला क्रिमान दी नो ए जुलाल अश्तक ना सलग हम कवई चले रे कई बा स्तासो द मख टूल मसले हगा हम पयो जल सरा को स्तासो मख तूरवी या तेर सरे दे दागुन दी चापुन दी दस्तर गुलां दी तूरे हलकी दी या दगा शांति नूर डेर मसले वी अवस्तासो मख वर सरा डेर बदरंग अखकारी नो हम उस जान न रवड़ी जुलाल अक्रीम और पेस्वाश चे दमख दगा टूल कास्परी नंबर कालू कई क्रीमान औ क्रीमान
2: सारा
1: नी हगा हम पयो जल सरा कुस्तासो मखतूरवी या तेर सरे दे दागुन दी चापुन दी दस्तर गुलां दी तूरे हलकी दी या दगा शांति नूर डेर मसली वी अवस्तासो मख वर सरा डेर बदरंग अखकारी नो हम उस जान न रवड़ी जुलाल अक्रीम और पेस्वाश चे दमख दगा टूल मसले दरला मुकमल खत्म की और दखाइस पखवंद पुएशी पखवंद जुलाल बतासुता पहर यो जलना स्टोर

कॉस्मेटिक स्टोर और मेडिकल स्टोर के ढेर पासान मिलावेगी और दनूरु मालूमात दपारा परे नंबर कालू कई 0311 19 36 633 यानी सिपर द्रे यौ यौ यौ नहा द्रेष्पग श्पग द्रे

हवजी अस्सलाम वालेकुम भाई संगे बशीर द पालंगोना बशीर संगे खै बिल्कुल ठीक ठाक हम ताजो खै सेहतम खदे खुशहाल है ना अल्लाह मुरद का शांति खुशहाल साथ तो टाइम।

0: ओखना मिनावालो सोकना रमानवी बटग्राम था अगू थवाई वेलकम
1: तासरा वादा दा बस मामी ना तासरा दा
0: पखेर नाले मर थवायू
1: तासरा वादा दा
0: हर कलर आशे
1: तासरा दा
0: सोकना रमानवी जाले मो प्यारा शे प्यारा शे दस्ता सुखपल कूर दे अवे मंगेर नखे।

0: अस्सलामु अलैकुम भाई, कैसे हो? खुशनुमा को सलाम और सारा को कहो कि तुम क्यों जल्दी जलती हो? मुझसे तुम्हें
1: शम जलाओ,
0: क्यों जलाओ मेरे से? तुम्हें क्यों जलाऊं रही है? तुम्हें क्यों जला रही है? मुझसे जलने वाले जल्दी आई एम आरजू छतर प्लान से वाय अल्लाह नू पीरियान भी हमने पी गया खुदा इस जालिमानू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो निजाम भाई सलामुन कबूल का ताजुल हक प्राम मीरान शो डे रखिस्ता दा जाल का ताजुल हक का दा मीरान चरता दा यो खु मीरानो दा सलाम वालेकुम से बनारस खान दे पिराड़े ना निजाम से सासु प्रोग्राम डेर खिस्ता दे मादे तरफ ना ठूल मिने वालो ता सलाम स्पेशल सलाम परवेज ताउल्ला ता सलाम सलाम वालेकुम बिलाल खान आप बनारा तासु सिंग गए खे जी शुक्र दे खयू तासु खे मिंग खयू तासु खे नोर खैर खिरियत ते नोर तासु खे जोम खेम तासु खे कोर ता खैर खिरियत ते नोर नोर खैर देखा ना वाड़ा वाड़ा खदी नोर तासु खे जोम खेम शुक्र दे कोर ता खैर दे वाड़ा खद अलविया खद टूल खदी मोटा पतले टूल खदी नोर खैर दे शुक्र दे नाजमुन द पुख्तनो आदत थे जी नोर खैर दे नूर अब रब कई कई कई ब्याह हुई नूर ना खुदे जालिमानो दे नूर नूर सर सिखवे तो कम सड़े नूर नूर की कहना बस पूछे जी तंग शेवे दे दाना जरूरत वाला पुख्कड़े दे सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, सबको सलाम और नफीसा दुरानी को स्पेशल सलाम में आयशा था मनना सलाम सैद गनी जमा द डेरान जवन खख दे डेरान जिंदाबाद आसमान तंग समेगी तंग समेगी जमा का खबर गई सलाम निजाम भाई तासु सिंगे आता भाई ता सलाम भाई माथा दा सॉन्ग प्ले का स्तरगु की मुस्केश ब्याई स्तरग हुआ हला दा फकीला बला प्लीज भाई लाजमी प्ले का आई एम काशिप खान फ्रॉम बटग्राम जय इस्लामाबाद ना रागलन काशिप खान प्लीज जमा रिक्वेस्ट पूरे खे मेहरबानी।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, लोग सपने देखते हैं, हम तुम्हें देखते हैं। बस फर्क इतना है कि लोग पूरी दुनिया देखते हैं और हम पूरी दुनिया में तुम्हें देखते हैं। मैंने वो कह रहा मर गिरी चिमरवर राना बेगाश में लालिया सुम्र बेपरवाश में जमा बदन की चिस्सा साश में लक यूसुफ राना पनाश में लक याकूब दरपसी लून बस्तर को शुमा।

0: जीरो 997 310 400। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ सड़े खुरे तू सिंह है वे। हेलो
1: मामू, आवाज तो सुन रही जवाली?
0: आवाज को जमा बिल्कुल राजी जी। उस राजी

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: बिल्कुल उम्दे किशन खा पगुसा की हो जो वाम चे अगकस ब्लड उसकम हो हाँ उम्दा खुदा कसम से मेरा किस्मत है खराब मेरा हर जगह बट मैं क्या कह सकता हूँ देर खलक हो फोन दीवाल तर आवाज से तासो हो न कवेदा से तबरेज में हाय हाय हाय अल्लाह दे कि बिया मुक्त बोल बोल सुका खली मंग जरा खुश था दी हम नहीं हो कुछ नहीं होता केरे अगे माने बस टाइम गुर
1: इशा जब आगे तो कम दे कैमरा इंस्टॉल है में
0: इंसान खतरनाक तब बनता है जब वो अपने जज्बात पर काबू रखना इंसान खतरनाक तब बनता है जब वो अपने जज्बात पर काबू रखना सीख लेता है हकीकत हम
1: खतरनाक तब उल्टे
0: मतलब दादे से इंसान मजबूत दीजिए क्यों मंग दादा वो इंसान मजबूत तब बनता है
1: कह दे पर जज्बात को कंट्रोल क्यों
0: मतलब इंसान जब दाम से मजबूत इंसान हो मगर दिशा खुद जज्बात बने कंट्रोल रहा खुद ही खतरनाक वीर दी खतरनाक दादे से आए दस साल जो दे शातिर दिमाग दी किसी मौजू पर कार
1: बिल्कुल सही
0: बेम सासो पांच जो दे मंगमन दी खुशहाल हो से बात से अस्सलामु अलैकुम फैज द सॉन्ग जमा तरफ ना प्ले का सर जमा द नेम राशि जान खामोश उसम खो जमा मख तक सुरशी खोबिया मान यो खबर हम निकेगी भाई अवा जमन को जमा मुशर गुस्सा ढेर कई
1: यो
0: गिलास मंडवर को बाची कम दे बस खत्म हो बटे मंग सर कम दे सहर ब्या ड्यूटी हम दाओबल से कम दे आई एम अरसा सलाम सलार अंग्रेज भाई वाले मरदा
1: सा
0: मंगा मन दी खुशाल से।